0: This is Sangeet 106.1 FM. More than just music. This is us. The vibe and energy of Sangeet 106.1 FM. This is us.
1: लड़के वाले आज आ रहे हैं और हम लड़कियां दिखाएंगी कि हम किसी से भी कम नहीं है. Music.

सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदां ॐ स्वस्तेन इन्द्रो वृषभाः स्वस्तेन भूका विश्ववेदा स्वस्तेन स्तारिक्षु अरिश्वनेमी स्वस्तेनो बृहस्पतिर्ददातु नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सततं नमः नमः प्रकृति भद्राय नियतां स्मरता स्विता सिद्धिविनायकनीश भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड।

क्षमा समन्विते सर्वे प्रति देवावासिसे प्रति क्रेतां वस्त्रं समर्पयामि थैंक्यू फॉर क्लोथिंग यज्ञोपवीत दानम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं स्थापितं पुरुषं तटने आयुष मुक्त

बृहस्पति वनस्पतिर्सुरभूतो गंधार्यो गणरूतम आग्रे सर्वदेवानां धूपोयं प्रतिग्रेतां पलिमलद्रव्या व्यवहारणी पर्पिफिकेशन।